प्याला 10 रुपए माल मिलेगा तो भी गोल्डन कलर का माल मिलेगा 10 से 10 देखने वाले का नजर खराब हो जाएगा अस्त जी 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए बोलो जी बोलो।

0: चल भाई,
1: आ पे तारे पे तारे
0: चले चले इधर चले भाई, 25 के अंदर दे जरा भाई एक का चले।